0: भारतीय है और मैं धोद गांव से हूँ और आज मैं धोद गांव का गाना बजाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। Today we are going to present the song from Rajasthan called Dhod Pyaro. It is the song, it's about my father, how started traveling to India to all over the world. Thank you.
1: Nous sommes vraiment heureux d'avoir Afridi de l'Inde, Rajasthan, chez nous. Il a nous appris une chanson, Dhod Pyari, écrite par son oncle, et ça raconte l'histoire de son père qui arrivait comme musicien en Europe.